0: great opportunity.
1: Auckland Council ka lakshya hai ki 2040 tak landfill mein jaane wale kachre ko zero kiya jaye. Iska matlab hai recycling, composting, cheezon ko dobara istemal karna aur purani cheezon ko naye tarike se kaam mein lena. Planet FM par suniye ek aur zero waste tip. क्या हर बेकार चीज को लैंडफिल में भेजना जरूरी है अपने नजदीकी कम्युनिटी रीसाइक्लिंग सेंटर पर जाइए यहां आप अपनी अनवांटेड चीजें दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का सेकंड हैंड सामान खरीद भी सकते हैं हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी और काम की चीज मिल जाए अपना नजदीकी कम्युनिटी रीसाइक्लिंग सेंटर ढूंढने के लिए ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट देखें अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 63,000 टन कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया गया ज्यादा जानकारी के लिए wastenothing.co.nz पर जाइए

जब नवरात्रि आने वाली होती है ना, हमारी उमंगें आसमान को छू रही होती हैं। हम सोचने लग जाते हैं इस बार नवरात्रि में हम अपने आप को कैसे सजाएंगे, कैसे संवरेंगे, कैसे अच्छे दिखेंगे, किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, हमारा परिधान कैसे होगा, हमारा नृत्य कैसे होगा, हम जब नाचेंगे, जब डांडिया करेंगे या जब गाएंगे, क्या गाएंगे, कैसे नाचेंगे। एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, एक ओकेजन है। 9 दिन तक खुशियां ही खुशियां होती हैं, लेकिन नवरात्रि का तात्पर्य इससे कहीं ज्यादा है। नवरात्रि अर्थात 9 रातें, इसकी बात कर रहे हैं ना, 9 रातों की बात कर रहे हैं। ठीक है हम गाएं बजाएं, ठीक है हम परमात्मा को याद करें, ठीक है हम परमात्मा की आराधना

अरे नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के द्वारा और अन्य पूजा की विधियों के द्वारा। लेकिन नवरात्रि का जो कारण है, जो आंतरिक कारण है, उसको समझना बहुत जरूरी है। भाई आप जरा विचार कीजिएगा, एक बार भगवान बाबा ने भी कहा था, नौ रातें नौ ग्रह भी हो सकते हैं, ग्रहों का हमारे पर प्रभाव पड़ता है, हम उनको शांत कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में नौ छिद्र हैं, विचार कीजिएगा आप, हम अपने आप पर संयम लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान बाबा ने कहा कि इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए केवल दो बातों पर ध्यान दें, चाहे कितने भी ग्रह हों, कितने भी छिद्र हों, दो ग्रह जो ग्रह नहीं है लेकिन ग्रह माना जा सकता है, ग्रह का तो दर्ज आपको जकड़ ले, आपको पकड़ ले, आपको कैप्चर कर ले, वो है राग और द्वेष। राग का अर्थ है अटैचमेंट, द्वेष का अर्थ है हेट्रेड, नफरत। राग का अर्थ है मोह, द्वेष का अर्थ है नफरत। ये दो ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इनसे मुक्ति पाने के लिए हम नौ दिन की आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो ग्रहों कहां से आते हैं? हमारे संस्कारों से। संस्कार कहां से आते हैं? जो हम जन्म जन्मांतों से कर्म करते आ रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल इंप्रेशन ऑफ मेनी पास्ट लाइव्स, जो जन्म जन्मांतर से हम करते आ रहे हैं, उनका निचोड़ है, उनका रस है, उनकी गंध है, उनका एसेंस है, वहां से आते हैं। विचार कीजिएगा। तो इन विचारों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? नवरात्रि। वो कैसे भाई? नौ रातों में, हालांकि हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन इसको मोटी मोटी बातों में बोला जाए तो तीन महादेवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीन देवियां अगर हम इनको समझें तो हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। पहला, महाकाली। कहते हैं पहले तीन दिन नवरात्रि के महाकाली की पूजा होती है। महाकाली तामसिक गुणों के प्रतीक है। महाकाली शरीर की प्रतीक है। महाकाली कर्मों की प्रतीक है। शरीर से क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं। शरीर से हम कर्म करते हैं। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म ठीक होने चाहिए। एक तरफ हमने बोला कि तामसिकता की देवियां महाकाली, एक तरफ बोला शरीर के से कर्म के, क्या मतलब हुआ? हम ये कह रहे हैं माता काली से कि मेरे शरीर में से तामसिकता को निकाल दें। जब को आपको तामसिक गुण भी चाहिए, जब आप सो रहे हैं, लेटे हुए, वो तमो है। जब आपका शरीर नहीं हिल रहा, नहीं डुल रहा, वो तमो है, वो तमो गुण है। लेकिन हमारे शरीर से कोई तामसिक कर्म ना हो,
उसके लिए हम माता काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं।

करती है माता। मेरे कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाले हों। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कर्म भगवान को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माता लक्ष्मी के पास। महालक्ष्मी जो है वह राजसिक गुणों की प्रतीक है, रजोगुण की, हमारे मन की प्रतीक है। विचार कीजिए, लक्ष्मी का नाम तो जानते ही हैं, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी? मन हमारा अगर रजोगुण से भरा होगा तो हम राक्षसता क्यों भागते रहेंगे? रजोगुण का अर्थ हिलना डुलना भी है, मूवमेंट भी है। रजोगुण का अर्थ विल पावर भी है, इच्छा शक्ति भी है। मन विचारों की गुत्थी है, मन में संस्कार है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। मन से भक्ति की जा सकती है। भक्ति क्या है? परमात्मा के लिए प्रेम, लव फॉर गॉड कहा गया, डिवोशन। जहां कि हम पहले कह रहे हैं कि कर्म हम कर रहे हैं शरीर से, लेकिन शरीर से कर्म आप वही करेंगे जब मन से आवाज निकलेगी ना। अगर आपका मन गलत दिशा पे जा रहा होगा तो शरीर अच्छे काम कैसे कर लेगा? अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो चोरी कैसे कर, शरीर से कर रहा है लेकिन कर कैसे रहा है? मन करवा रहा है, मन से आवाज आ रही है, मन शरीर को निर्देशन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, डू दिस एंड दिस, ऐसा करो वैसा करो। तो हम ये कह रहे हैं माता लक्ष्मी राजसिक गुणों की प्रतीक है, मन की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक है। हम मां से कह रहे हैं, मां मेरे मन को पवित्र करो, प्यूरिफाई माई माइंड, अर्थात मेरे मन में से काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर छह आंतरिक शत्रु बाहर निकल जाएं। अगर वो निकल जाते हैं बाहर, वो कंट्रोल में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं, तब हम अपने मन का प्रयोग धर्म के रास्ते पे कर सकते हैं। अगर मन धर्म के रास्ते पे होगा, तन अपने आप धर्म के रास्ते पे जा सकता है। तीसरी देवी है महासरस्वती, जो सात्विक गुणों की देवी है, जो ज्ञान की देवी। यहाँ पे देखा होगा बहुत से लोग माता सरस्वती की पूजा कराते हैं बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई करें, लेकिन माता सरस्वती वो ज्ञान नहीं देती जिसकी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में विषय वह सोच रहे हैं आप। कोई भौतिक विज्ञान रसायनिक विज्ञान की बात नहीं हो रही है, फिजिक केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, गणित की बात नहीं हो रही, मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही है। माता सरस्वती ज्ञान के प्रतीक तो हैं, लेकिन हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? आपको चाहिए आत्मिक ज्ञान, लेकिन आत्मिक ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? जब आपके कर्म सही रास्ते पे होंगे, जब आपकी भक्ति सही रास्ते पे होगी, फिर आप ज्ञान क्यों बढ़ सकते हैं? भगवत गीता में 18 अध्यायों के बीच में 3 महायोगों की बात की गई है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग।

कुछ भी करते हैं कर्म है। आप नहा रहे हैं कर्म है, आप सो रहे हैं कर्म है, आप बात कर रहे हैं वो भी कर्म है। एक होता है इंस्टेंट कर्मा, आप नहाए आपका शरीर साफ हो गया, आपने कर्म किया नहाने की गतिविधि करी और आपका शरीर साफ हो गया, उसका फल मिल गया आपको। एक कर्म होता है आपने एक बीज को बोया जमीन पर और 6 महीने के बाद 1 साल के बाद उस बीज से वृक्ष बन गया, उसमें से फल आ गया, आपको कर्म का फल मिला, आपने बीज बोया उसका फल मिल रहा है लेकिन समय ज्यादा लग गया। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने हाथों से शरीर से कर्म है, लेकिन सबसे पहले हमें करना है पवित्र कर्म। वो क्या है, आपने अपना कर्म किया, उस कर्म के और उसके फल को दोनों को परमात्मा को अर्पित कर दिया। आप केवल कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए, बस जो आपका धर्म है, जो आपका स्वधर्म है, हम कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहे। आप पिता हैं, आपका धर्म है अपने बच्चों के जिक्रे करना, बच्चों में गुण डालना, बच्चों को भोजन देना, उनका ख्याल रखना। आप पति हैं, पति का ख्याल रखेंगे, आप पुत्र हैं, माता पिता का ख्याल रखेंगे। आपका धर्म एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ क्या है? जो भी आपके अलग अलग रोल्स हैं लाइफ के अंदर, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका धर्म एज ए एम्प्लॉई क्या है? आप व्यापार करते हैं, आपका धर्म क्या है? अपने धर्म को समझना। आप अपने शरीर से कर्म करेंगे, कर्म का फल उसका क्रिया जो है, कर्म की क्रिया करने की क्रिया वो दोनों परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, उसे बोला गया पवित्र कर्म, सेक्रेट कर्म। आसान तरीका है। ठीक है जी, भगवद गीता के अगले अध्याय कहते हैं भक्ति योग। भक्ति क्या? लव फॉर गॉड, सबके लिए हृदय में प्रेम है, परमात्मा के लिए नहीं है। लव फॉर गॉड का मतलब होता है सबके लिए प्रेम, उसी परमात्मा को सबके भीतर देखना। पहले आप परमात्मा की आराधना कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपका देखने का तरीका, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आप सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसको ज्ञान कहा गया। ज्ञान हमें चाहिए आत्मा का ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आप बोलते हैं मेरा शरीर, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे आंखें हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे माइंड माइंड माइंड। आप बोलते हैं ये मेरा मन है, माई माइंड इज नॉट वर्किंग, कहते हैं नहीं, माई माइंड इज नॉट वर्किंग, मेरा मन दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे मन में इच्छा आ रही है, मेरा दिल नहीं करता करने को। दिल भी आपका है, शरीर भी आपका है, तो फिर आप कौन है जो ये क्लेम कर रहा है? आप एक आत्मा है। वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस, वो रियलाइजेशन तब आता है जब हम हर चीज के अंदर परमात्मा को देखते हैं। वो ज्ञान योग है। ज्ञान क्या है कि हर चीज में लिंक होते हैं आत्मा परमात्मा का। तब आपको लगता है कि मैं तो खुद में परमात्मा ही हूं। ये है सात्विकता। कर्म, भक्ति, ज्ञान, शरीर, मन, आत्मा, तमो रजो सतो गुण,

हम इसकी पूजा कर रहे हैं 9 दिन तक। हम असल में अपने भीतर झांक के अपने गुणों को टटोल रहे हैं, उनमें एक हार्मनी, एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अन्य शब्दों में देखा जाए, काली माता रक्षा करती हैं। काली का रूप देखा आपने, डरावना सा हो जाता है। आप छोटे बच्चे हैं, मान लो आपकी रक्षा कौन करता है? आपकी माँ करती है। आप किसी चिड़िया के बच्चे को हाथ लगाइए, चिड़िया आपको छोटी सी चोट मारेगी। किसी पशु के बच्चे को हाथ लगाइए, पशु आपको झपटेगा मारने के लिए। चाहे कितना भी छोटा हो लेकिन आप पे टूट पड़ेगा वो अपने बच्चे की रक्षा हेतु। उस समय पशु जो है, पशु माता जो है, या पंच पक्षी माता जो है, और माता काली का काम कर रही होती हैं। वही आपकी माँ ने किया है, सदैव आपकी रक्षा करी है। माता लक्ष्मी सुख की देवी है, हर आदमी सुख चाहता है। आपकी माँ ने आपको सारे सुख दिए हैं। मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मेरे बच्चे को बीमारी ना हो, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, इस चीज का ख्याल कौन रखता है? माँ रखती है। माँ सब कुछ करती है अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए। सारी खुशियां कुर्बान कर डालती है अपनी। आपको चलना किसने सिखलाया? आपको बोलना किसने सिखलाया? आपके अंदर गुण किसने डाले? माँ ने। माँ ने आपको बोलना सिखलाया, बेटा ऐसे बोलते हैं। आपको मातृभाषा सिखलाई, तभी तो बोलते हैं मातृभाषा। आपको पता भी लगा कि आप ग्रामेटिकली कितने करेक्ट हो गए, आपका व्याकरण कितना शुद्ध हो गया। आपको पता भी लगेगा कब सीखा आपने ये। इसलिए बोलते हैं मदर टंग। बच्चा अपनी मातृभाषा में गलती नहीं करता। कहाँ कौन सा लिंग लगाना है वह जान जाता है। Isn't it amazing? आपके अंदर जो अच्छे गुण है कहां से आए? आपके माता ने डाले। आपके ज्ञान की वृद्धि हो, कितने ध्यान दिया? आपकी माता ने दिया। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अर्थात काली लक्ष्मी सरस्वती तीनों रूप जो है, तीनों स्वरूप जो है माता दुर्गा के, वे आपकी मां के भीतर हैं। ये मदर इज एम्बॉडीमेंट ऑफ काली लक्ष्मी सरस्वती। फिर भी हम मंदिर में जाके परमात्मा को खोज रहे हैं, फिर भी हम मंदिर में जाके खोज कर रहे हैं देवियों की, फिर भी हम मंदिर में जाके माता के आगे आरती उतार रहे हैं। संसार भर के सारे मंदिरों में चक्कर लगा लें, सागर की गहराई में जाएं, हिमालय की चोटी पे जाएं। अगर आपने अपनी मां की आराधना नहीं करी, मां की सेवा नहीं करी, मां को आदर सम्मान नहीं दिया, कोई भी देवियां आपसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। शरीर जब पैदा होता है, आप मां के कोख से निकले, शरीर निकला, आत्मा कहां से आई? वी डोंट नो। कोई आपसे पूछता है, भैया आप कहां से आए हो? आपको नहीं मालूम। आपको कितना मालूम है? आपका शरीर माता के पेट से आया, मां के कोख से आया, दैट्स ऑल। लेकिन आत्मा कहां से, कौन से लोक से आ रही है, कौन से जन्मों से आ रही है, कुछ नहीं पता। एब्सोल्युटली नो नॉलेज। आप कहां जा रहे हैं? अर्थात मरने के बाद जब घर वाले आपके शरीर को जला देंगे, दफना देंगे, राख कर देंगे, भस्म कर देंगे, जाके गंगा जमुना में बहा के आ जाएंगे, वह तो केवल शरीर है, पांच तत्वों से बना हुआ। आत्मा कहां जाएगी? आत्मा की यात्रा किस ओर जाएगी? आपको नहीं पता। यू हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। आप इस संसार में कब तक रहेंगे?

0: Absolutely no idea. आपका आपकी आयु 1 वर्ष की है या 1000 वर्ष की है आपको नहीं मालूम है. आप कौन हैं? Who am I? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता. I have not realized it yet. जब इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उसको कहा जाता है ज्ञान योग. वो माता सरस्वती का काम है. वो ज्ञान है जो आपको चाहिए. जब बच्चा पैदा होता है बोलता है को हम मैं कौन हूं. जब आप शरीर छोड़े कम से कम उस समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आपके होंठों में मुस्कुराहट हो, आपके मुख से निकल रहा हो तो हम मैं वो हूं. आई एम दैट. आई एम वन विद द गॉड. आई एम आई. नौ दिन की दुर्गा पूजा आपको अच्छे कर्म करने का प्रेरित करती है, मन की शुद्धि कराती है और आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ाती है. और ये आपकी माता की सेवा से होगा, माता की आराधना से होगा, माता के सम्मान से होगा और अपने प्रयास से अपने अंदर झांक के अपने गुणों को टटोलते हुए सतो गुण रजोगुण तमोगुण क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाबा विशेष करने से आपकी नवरात्रि शुभ हो जाएगी. जय श्री राम.
1: Your community on planetaudio.org.nz.
2: ऑकलैंड काउंसिल का लक्ष्य है कि 2040 तक लैंडफिल में जाने वाले कचरे को जीरो किया जाए. इसका मतलब है रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना और पुरानी चीजों को नए तरीके से काम में लेना. प्लैनेट एफएम पर सुनिए एक और जीरो वेस्ट टिप. ऑकलैंड में 2010 से हर व्यक्ति के हिसाब से लैंडफिल में जाने वाला कचरा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है. कचरा कम करने का एक आसान तरीका है अपने रिसाइकलिंग बिन का सही इस्तेमाल करना. सॉफ्ट प्लास्टिक, गार्डन का ग्रीन वेस्ट और घर का नॉर्मल कचरा रिसाइकलिंग बिन में ना डालिए. अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 63,000 टन कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया गया. ज्यादा जानकारी के लिए wastenothing.co.nz पर जाइए.